0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है कि जो बादशाह हकीकी पाक ज़ात जबरदस्त हिकमत वाला है।
1: वॉइस ऑफ नॉर्वे से मैं हूं आपकी प्रेजेंटर अंबर हकान। खूबसूरत नगमात, अछूते खाके, कौमी खबरें, बैनुल अक़वामी खबरें,

0: प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है।

0: इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
1: समय 22 करोड़ आवाम का कसूर ये तो है कि बार बार आजमाए हुए सियासतदानों ही को इक्तदार की कुर्सी पर बिठा देते हैं। मैं आज आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल याद कराता हूँ कि मुसलमान एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता, जबकि पाकिस्तानी कौम तो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के फैसले से चौथी बार डसी गई है। पहली मरतबा इतवार को 10 बजे अदालत लगाई और दूसरी दफा हफ्ते को रात 12 बजे। आज अदालत लगाने के लिए घर से निकल पड़े कि मेरे फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग शुरू हुई, तो अदालत से वापसी कर ली। जो ही वोटिंग शुरू हुई अदालत से वापसी कर ली कि बेटी को खुशखबरी सुना दें। स्पीकर ने इमरान खान से वफा की और तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले असम्बली से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ कसूर किसका है? इसमें कुछ मिडल मैन यानी सियासी वर्कर और 50% मीडिया पर्सन का भी अमल दखल है। अब हालात चीफ साहब बिगड़ने जाएंगे और उसके जिम्मेदार आप होंगे। समझ नहीं आती कि अदालत बालतर है या पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाती है और अदालत उस पर अमल करता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो उल्टा हो रहा है, अदालत ही सब कुछ करती है। मैं चीफ जस्टिस साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ, जाफर सादिक बरसरे इक्तदार आ गए। बेचारा इमरान खान अकेला था, लेकिन फिर अवाम की ताकत से वापस आएगा। अब सी पैक भी ख़त्म होगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए कि वो बड़ा चोर भी आ रहा है। देखते हैं कि आप उसकी सज़ा बहाल रखते हैं या उसके गले में हार डालते हैं। मैंने पाकिस्तान को बनते भी देखा, टूटते भी देखा और अब कुछ और देखूंगा। पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक फौज, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, कोई भी अदारा न्यूट्रल नहीं रहा। ये लोग तो करप्ट हैं, तीनों अदारे करप्ट रहे हैं और रहेंगे। मुझे आज अकबर अलाहाबादी याद आ गए। 150 साल पहले उन्होंने कहा था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहेब औलाद हो गए। मुबारक हो चीफ साहब, इमरान खान नाकाम हो गया, करप्ट चोर माफिया कामयाब। मुबारक। कौमी असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी तलब कर लिए गए हैं और मंजूर भी हो गए हैं। कुर्बान जाऊं मैं स्पीकर कैसेट पर, उन्होंने अदम एतमाद पर वोटिंग से इनकार कर दिया और मुस्तफ़ी हो गए। खान के खिलाफ नहीं गए, हरामी हैं एमक्यूएम वाले। उनका जरदारी वो हशर करेगा कि याद रखेंगे कि गद्दारी क्या होती है। हरामी हमेशा गवर्नमेंट में रहे, सिर्फ अपने मुफाद के लिए जरदारी इनसे अपना सब पैसा वसूल कर लेगा जो इसने इनको दिया है कि मेरा साथ दो। जनरल परवेज मुशर्रफ ने आयन तोड़ा, जनरल अयूब खान ने आयन तोड़ा, जनरल जियाउल हक ने आयन तोड़ा, जुल्फकार अली भुट्टो ने आयन तोड़ा। तुम उधर हम इधर की बात की और मुल्क दो टुकड़े हो गया। मुल्क का आयन तोड़ना बड़ा जुर्म है या आयन तोड़ना? हमारा आयन कुरान पाक है। काश इमरान समझ गया होता और आयन तोड़ देता, लेकिन ये काम सिर्फ फौज ही कर सकती है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को फंडिंग कौन करता है सबको मालूम है। अब बाजवा साहब चोरों, लुटेरों, करप्ट और माफिया के बास को सलूट करेंगे। मजबूर हैं, पीर को नई हुकूमत बन रही है, हाथ विच तस्बी, मुंडा नाल, सदर ममलकत, मिलिट्री और अमेरिका का बूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम वजीर आजम, नही वजीर खारजा, शक्ल से बदमाश फैसलाबादी डाकू गुंडा वजीर दाखला, पता नहीं शाल कोटी का क्या होगा जिससे मुतलक जरदारी साहब कहते थे कि ये इंग्लिश भी पंजाबी में बोलता है। एक कंजीरे बड़े दल्ले मिंट की डड्डू चार्जर वजीर इतलात, साद रफीक वजीर रेलवे, बेचारी गराज वाली रह गई। इसके साथियों को चेरी ब्लॉसम कभी साथ नहीं रखेगा। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਪੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨਕੀ ਤਾਹਿਆਤ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਹਾ, ਨਾ ਯੇ ਸਾਦਿਕ ਹੈ ਨਾ ਆਮੀਨ, ਇਸਕੋ ਤਾਹਿਆਤ ਨਾ ਅਹਿਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਇਸ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅੱਛੇ, ਆਪ ਉਨਕੀ ਤਾਹਿਆਤ ਨਾ ਅਹਿਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕਰ ਬੇਚਾਰੇ ਚੈਰੀ ਬਲਾਸਮ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀਮ ਸਫਦਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਯੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ 100%। ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਆਪ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਟਾਲਤੇ। ਆਪਸੇ ਬੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।